हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत. इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सुलभा पिशवीकर की गाई हुई मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी से. आपके साथ तबले पर है धनंजय करवंडीकर, हारमोनियम पर है शरद सिधे. सुनते हैं मिश्रा किरवाणी में बंदिश की ठुमरी, कलाकार सुलभा पिशवीकर.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मिश्र किरवाणी में बंदिश की ठुमरी। कलाकार थी सुलभा पिशवीकर। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे शरद सिधिये और तबले पर थे धनंजय खरवंडीकर। श्रोताओं, आइए इसके बाद सुनते हैं दिग्विजय वैद्य की गाई हुई मिश्रगावती में ख्याली ठुमरी, सजना घर मेरे। ताल आधा तीन ताल। आपके साथ तबले पर है रोहन चिंसोरे, हारमोनियम पर है उपेंद्र सहस्रबुद्धे। सुनते हैं मिश्रगावती में ख्याली ठुमरी, कलाकार दिग्विजय वैद्य।

श्रोताओ, हम सुन रहे थे मिश्रगावती में खयाली ठुमरी। कलाकार थे दिग्विजय वैद्य। आइए इसके बाद सुनते हैं दिग्विजय वैद्य का गाया हुआ मिश्र पीलू दादरा। बोल है हटो हटो सैया।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे दिग्विजय वैद्य का गाया हुआ मिश्र पिलू दादरा। उपशास्त्रीय गायन के अंत में आइए आप सुनते हैं सुलभा पिशवीकर का गाया हुआ भैरवी दादरा। आपके साथ तबले पर है धनंजय खरवंडीकर और हारमोनियम पर है शरद सिधिए। सुनते हैं भैरवी दादरा, कलाकार सुलभा पिशवीकर।

0: is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है मल्लिका बनर्जी का गाया राग ललित। विलम्ब ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं रैन का सपना मैं कासे कहूं, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं जोगिया मोरे आए। तबले आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Mallika Banerjee. First listen to Rag Lalit. The Vilambit Khayal is set to Ektal. The words are, Rain ka sapna mein kaise kahun. The Drut Khayal is set to Teental. The words are, Jogia More Aaye. She is accompanied by Vinod Pathak on Tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on Sarangi.

0: अभी आप मल्लिका बैनर का गाया राग ललित सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग अहीर भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं दीनों करतार। और द्रुत ख्याल ताल में निबद्ध है, बोल हैं गरीब नवाज जग निस्तार। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग ललित बाय मल्लिका बैनर्जी। नाउ लिसन टू राग अहीर भैरव। द विलंबित ख्याल इज सेट टू एक ताल, द वर्ड्स आर दीनो करतार। द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर गरीब नवाज जग निस्तार। शी इज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी।

0: अभी आप मल्लिका बैनर्जी का यह राग अहीर भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडेशन इन राग अहीर भैरव बाय मल्लिका बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कलाकार है विजय बख्शी। आपने प्रस्तुत किया राग नटसारंग सुनते हैं। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है सुना सुना फिर याद और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मन मंदिर में मूरत उनकी। साथ संगत हारमोनियम चैतन्य कुंटे, तबला मिलिंद पोटे। तो आइए सुनते हैं विजय बख्शी द्वारा प्रस्तुत राग नटसारंग।

अभी आपने सुना राग नट सारंग, कलाकार थे विजय बख्शी। आपके साथ हारमोनियम पर थे चैतन्य कुंटे, तबले पर थे मिलिंद पोटे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं विजय बख्शी द्वारा प्रस्तुत राग कृष्ण कल्याण।

श्रोताओं, अभी आपने सुना विजय बख्शी द्वारा प्रस्तुत राग कृष्ण कल्याण। आपके साथ हारमोनियम पर थे संजय गोप्टे, तबले पर थे मिलिंद पोटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग केदार पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नारू गोपाल पात्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग केदार पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ सितार रिसाइटल इन द राग

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग केदार पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे दीपंकर दत्ता। आपके साथ तबले पर थे नाडू गोपाल पात्रा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं दोला देवनाथ। आपके साथ तबले पर हैं तुषार दत्ता और हारमोनियम पर हैं कमलाक्षा मुखोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा। कलाकार हैं दोला देवनाथ।
1: You were listening to a sitar recital in the Raag Kedar. Our artist was Dipankar Dotto. Accompanying our artist on the tabla was Narugopal Patro. This is Raagam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal recital. Listen to a Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra. Our artist, Dola Debnath. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Dotto and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Mishra Pilu Thumri followed by Pahari Dadra, our artist Dola Debnath.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी तदुपरांत पहाड़ी दादरा सुन रहे थे। कलाकार थी दूला देवनाथ। आपके साथ तबले पर थे तुषार दत्ता।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

आप सुन रहे हैं ख्याल युगल गायन। कलाकार हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल डियो रिसाइटल बाय पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं बरनी ना जाए। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल हैं पिया को मनाऊं मानत नाही रे। नाउ द आर्टिस्ट पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र रेंडर राग बिलास खानी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल युगल गायन। कलाकार थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। संगत कलाकार थे तबले पर मुकुंद भाले और हारमोनियम पर मोहन मूंगरे। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल ड्यू रिसाइटल बाय पंडित राजन मिश्र एंड पंडित साजन मिश्र। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय मुकुंद भाले ऑन द तबला एंड मोहन मूंगरे ऑन द हारमोनियम। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा, राग है बसंत मुखारी। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला, तत्पश्चात दो गतें। विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में। संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी। द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित राम स्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित राम स्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित निर्माल्य डे का गायन. इनका गाया राग शुद्ध कल्याण पहले प्रस्तुत है. चौताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं अल्लाह साहेब. पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present a vocal rendition by Pandit Nirmalya Day. He is accompanied by Mohan Shyam Sharma on Pakhavaj. First, listen to Dhrupad in Rag Shuddh Kalyan, said to Chautal. The words are Allah Sahib.

0: और प्रस्तुत है राग अडाना। पखावज पर आपकी संगति की है मोहन श्याम शर्मा ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित निर्मल याडे। नाउ लिसन टू राग अडाना इज अकंपनीड बाय मोहन श्याम शर्मा ऑन पखावज।

0: अभी आप पंडित निर्माल्य डे का गाया राग अडाना सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी मोहन श्याम शर्मा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग अडाना बाय पंडित निर्माल्य डे। दिस प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भजन. कलाकार हैं ज्योति आचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है ज्योति आचार्य से भजनों का कार्यक्रम.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present devotional songs. We begin the program with bhajan. Our artist is Jyoti Acharya. Listen now to bhajan. Our artist, Jyoti Acharya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थी ज्योति आचार्य। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने पुनः भजन प्रस्तुत करेंगे। कलाकार हैं सोहिनी मौजूमदार। तो लीजिए, प्रस्तुत है सोहिनी मौजूमदार से भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज ज्योति आचार्य। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now bring you Bhajan by our artist Sohini Mojumdar. Listen now to Bhajan. Our artist is Sohini Mojumdar. You are listening to Bhajan. Our artist is Sohini Mojumdar.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थी सोहिनी मजुमदार। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए पुनः प्रस्तुत है आपके सामने भजन। कलाकार हैं सुचेता सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है सुचेता सरकार से भजन।
1: यू वर लिसनिंग टू भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज सोहिनी मजुमदार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. We now present Bhajan by our artist Sucheta Sarkar. Listen now to Bhajan. Our artist is Sucheta Sarkar. You are listening to Bhajan. Our artist is Sucheta Sarkar.